0: आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। एशिया, अमेरिका, यूरोप और दीगर खित्तों के दिफाई हुक्काम ने कबल अज़ीं रवा माह अमेरिका और चीन के सरबराही इजलास के बाद सिंगापुर में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया है। शंग्रीला डायलॉग जुमे को शुरू हुआ। मंदूबीन में जापानी वजीर दिफा कोइज़ुमी शिंजिरो और अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ शामिल हैं। ईरान की कशीदा सूरत हाल के एशिया पर असरात से मुतालिक बातचीत का इम्कान है। दीगर मौजूआत में मुमकिन तौर पर ताइवान और बुहरा जनूबी चीन से मुतालिका मसाइल जैसे इलाकाई सलामती के चैलेंजेस शामिल होंगे। दो तरफा और कसीर फरीकी बातचीत बतवक्को है। हेगसेथ हफ्ते को तकरीर करने वाले हैं। उनके पैगाम और इस पर एशियाई ममालिक के रद्द अमल पर तवज्जो मरकूज होगी। हिंद बहरुल काहिल में जापान के किरदार के हवाले से भी दिलचस्पी बढ़ रही है। जापानी वजीर आज़म ताकाइची सानाए ने कबल अज़ीं रवा माह खारजा पॉलिसी के हवाले से अपनी तकरीर में आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल का एक तजदीद शुदा विजन पेश किया था। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने अपने मुल्क की फ़ौज को गज़ा की पट्टी पर कंट्रोल बढ़ाने की हिदायत दी है ताकि इस्लामी ग्रुप हमास पर दबाव बढ़ाया जा सके। नेतन्याहू ने जुमेरात को कहा कि अब हमारे पास 60% कंट्रोल है और उनकी हिदायत है कि इसे बढ़ाकर 70% कर दिया जाए। गज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान अमरीकी ज़ेर क़यादत अमन मनसूबे पर मबनी जंगबंदी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अमल में आई थी। ताहम इस पट्टी के सेहत हुकाम ने जुमेरात को बताया कि जंगबंदी के नफाज के बाद से अब तक 922 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में वक्फे वक्फे से हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अमन मनसूबे में इसराइली फ़ौजियों का इनखला और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। ताहम अभी तक इस मंसूबे पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। मशरिक़े वुस्ता में तूल पकड़ते तनाज़े का असर भारत की दो बड़ी ज़रई मसनूआत मसाला जात और आम की बरामदात पर पड़ रहा है। मसालों से तेल बनाने वाली जनूबी रियासत केराला में एक कंपनी खलीजी ममालिक के साथ तजारत करती रही है। आबनाए हुरमुस की बंदिश के बाद इसे अपनी तरसील के लिए दूसरे रास्ते तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा। कंपनी का कहना है कि इसे नकलोहमल के ज़्यादा अखराजात और बहरी इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे का सामना है। आम की सनत पैदावारी हजम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सनत है, ये भी मुतासर हुई है। जुनूबी रियासत कर्नाटक के कुछ किसान पहले अपनी पैदावार का 40% मशरिक़े वुस्ता को बरामद करते थे, लेकिन तनाज़े के आगाज़ के बाद से इस खित्ते की तमाम बरामदात रुक गई हैं। कहीं और जाने की जगह ना होने के बायस उनके आम कम कीमतों पर अंदरून मुल्क मार्केटों की तरफ बड़ी मकदार में जा रहे हैं। वो अपनी मामूल की कीमत के 1/4 से भी कम पर फरोख्त हो रहे हैं, जिसके नतीजे में किसानों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है।
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور دیگر معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے۔

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: दोस्तों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: रोहिणी जी, देखिए मई महीने में खाने पीने की कितनी सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं ना?
1: हाँ, चाहे 50-60 येन की वृद्धि ही क्यों न हो, लेकिन खरीदारी के बाद पूरा बिल देखते ही काफी झटका लगता है।
0: हाँ, आजकल हमने बाहर खाना काफी कम कर दिया है और जितना हो सकता है घर पर ही बनाते हैं।
1: ये बात तो सही कहा आपने। मुझे पहले से तुलना करने में दिक्कत होती है क्योंकि जापान में इतना समय नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट का बिल पहले से ज्यादा आने तो लग गया है।
0: हाँ, ये तो है। तो घर पर रहते हुए जायकेदार खाने का आनंद लेने की हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, यानी आओ पकाएं जापानी खाना के अंतर्गत आज बनाना सीखेंगे एक नई विधि। तो पहले जल्दी से पत्रों की ओर चला जाए।
1: नेकी और पूछ। तो सबसे पहले है सुरेश अग्रवाल जी का पत्र, केसिंगा उड़ीसा से।
0: अच्छा,
1: लिखते हैं 10 मई के चेरी के देश से कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों को पर्याप्त समय दिया जाना अत्यंत अच्छा लगा। विशेष रूप से श्रोता बहन अंजुला जी का अपनी ही आवाज में प्रतिक्रिया सुनना एक नया और सुखद अनुभव रहा। यद्यपि पूर्व में भी कुछ श्रोता ऐसा कर चुके हैं, फिर भी इस प्रस्तुति ने कार्यक्रम में एक अलग आत्मीयता जोड़ दी। कार्यक्रम में आपने उल्लेख किया कि भारत में लोग अपने केश बेचकर भी आय अर्जित करते हैं तथा यहाँ से बालों का निर्यात भी किया जाता है। इस विषय ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। मैंने आपकी वेबसाइट पर संबंधित क्लिप खोजने का प्रयास किया किंतु वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। कृपया मार्गदर्शन करें कि उक्त सामग्री वेबसाइट पर किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है।
0: सुरेश जी, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपकी मधुर आवाज में हमें कार्यक्रम में आपकी बेबाक राय सुनने का अवसर मिलेगा। तो आप भी जरूर भेजें और बाकी श्रोताओं से भी यही अनुरोध है। और जैसा आपने कहा कि ऑडियो क्लिप से कार्यक्रम में एक नई जान तो आ जाती है।
1: बालों से कमाई करने वाली क्लिप के बारे में आपका प्रश्न है और खेद है आप इसे नहीं ढूंढ पाई। आप अगर समाचारों पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे भी विशेष क्लिप का हिस्सा है। वहां पर यह वीडियो जिसका शीर्षक है झड़ते बाल भी करें कमाई आपको दिख जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे देख पाएंगे।
0: जी हाँ। और अब देखिए, ये अगला पत्र है SB शर्मा जी का और ये लिखते हैं, NHK हिंदी सेवा के समाचार से पता चला कि ईरान और अमरीका समझौते के करीब पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया इस खुशखबरी के इंतजार में है। उम्मीद करते हैं कि ये समझौता जल्द होगा। भारत सहित दुनिया गैस और पेट्रोल ईंधन की कमी से परेशान है। अमेरिका द्वारा उत्पन्न ये संघर्ष पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। ईरान ने भी इस युद्ध में अपने 20 से ज्यादा शीर्ष नेताओं को खोया है और अब समझौते के लिए विवश हुआ है। उम्मीद है कि ये समझौता जल्द होगा और ईरान में अमन होगा तथा भारत जैसे देशों में महंगाई और विकास पटरी पर आएगी।
1: SB शर्मा जी, इतने समय बाद लिखने के लिए धन्यवाद। वाकई अमेरिका ईरान संघर्ष ने काफी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। आपने हाल की एक खबर सुनी होगी कि जापान में छपाई की स्याही की किल्लत के बीच एक जापानी कंपनी ने अपने कुछ स्नैक्स के पैकेट पर रंगों से छपाई न करने का फैसला लिया है। पैकेट को काला सफेद ही रखने का फैसला ले लिया है।
0: बताइए, किसे मालूम था कि इस संघर्ष से रंगों पेंट्स की भी किल्लत शुरू हो जाएगी। तो शर्मा जी, हम क्या आपसे पूरी दुनिया सहमत है कि संघर्ष तुरंत समाप्त होना चाहिए ताकि हम अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट सकें। शांति ही तरक्की की कुंजी है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद संकल्प लिया कि युद्ध कभी नहीं करेगा और यहाँ जापान के लोग भी शांति की ही हमेशा वकालत करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद झेला है कि युद्ध कभी किसी के विकास में सहायक नहीं हो सकता।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगला पत्र है पथिक जैन जी का। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंटवार्ता सुनाने के लिए बहुत बहुत आभार। इतने सरल और सहज व्यक्तित्व को सुनकर बहुत अच्छा लगा। पंकज जी द्वारा तीसरे भाग में खिचड़ी की उपयोगिता पर दी गई टिप्पणी बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छा,
1: एक कलाकार के लिए उसका शरीर ही एक उपकरण है और उसके पाचन को सही रखने के लिए खिचड़ी उपयोगी होती है। मेरा एक सुझाव है कि ऐसी भेंट वार्ताओं को डाउनलोड कर सकने का कोई लिंक साझा करें और कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो।
0: पथिक जी, कार्यक्रम सुनने और सराहने के लिए आभार। व्यक्तित्व के धनी पंकज जी की बातों में जो फलसफा था वो सभी को पसंद आया होगा, ऐसी आशा है।
1: डाउनलोड करने की सुविधा तो संभव नहीं है, अभी हम इस भेंट वार्ता का वीडियो तैयार करने में जुटे हैं जो लंबे समय तक देखा जा सकेगा, तो कृपया थोड़ा इंतजार करें। वॉइस मैसेज की सुविधा तो उपलब्ध है, आप जरूर एक बार कोशिश करें भेजने की।
0: जी हाँ। और अब देखिए, ये अगला पत्र है राम कुमार नीरज जी का। लिखते हैं, 10 मई के चरी के देश से की प्रस्तुति सचमुच मन को छू लेने वाली थी। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रोताओं द्वारा भेजे गए पत्रों को जिस आत्मीयता और अपनेपन के साथ प्रस्तुत किया गया वो सुनकर ऐसा लगा मानो दूर बैठे लोग एक ही परिवार के सदस्य हों। आज के तेज और भागदौड़ भरे समय में जहां लोगों के पास एक दूसरे की बातें सुनने तक का समय कम होता जा रहा है, वहां चेरी के देश से जैसा कार्यक्रम श्रोताओं के दिलों को जोड़ने का एक सुंदर माध्यम बन गया है। कार्यक्रम में पढ़े गए पत्रों के माध्यम से श्रोताओं की संवेदनाएं, उनके विचार, उनकी खुशियां और उनके अनुभव सुनने को मिले। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर पत्र में अपनेपन की एक सच्ची भावना थी। आपकी प्रस्तुति शैली भी अत्यंत मधुर और प्रभावशाली थी। कार्यक्रम की इंद्रधनुषी प्रस्तुति ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। कभी संगीत की मधुरता, कभी श्रोताओं की भावनाएं और कभी जापान तथा भारत के सांस्कृतिक संबंधों की झलक, सब कुछ मिलकर कार्यक्रम को यादगार बना रहे थे। साथ ही लिखते हैं, मैं स्वयं भी रेडियो के माध्यम से लंबे समय से जुड़ा रहा हूं और समाज, पर्यावरण तथा मानवीय विषयों पर अपने विचार साझा करता रहता हूं। हाल में मैंने हिरोशिमा और पोखरण की पृष्ठभूमि पर आधारित एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मानवता और शांति का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इसलिए जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने वाले आपके कार्यक्रम मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं।
1: रामकुमार नीरज जी, आपका पत्र प्रेम और स्नेह से सराबोर है। यह मंच आपका और सभी श्रोताओं का है, तो जाहिर है इसमें आप लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहती है सभी पत्र दिल से पढ़ें और श्रोताओं के मन में जो चल रहा है उसे भांपने का प्रयास करें। अगर इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा भी खरा उतरते हैं तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे।
0: हिरोशिमा और पोखरण की पृष्ठभूमि में आपकी रिपोर्ट अत्यंत दिलचस्प प्रतीत होती है, तो अगली बार जरूर विस्तार से बताएं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। और अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में।
0: रोहिणी जी, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की कि आज एक जायकेदार रेसिपी साझा करेंगे, तो चलते हैं आओ पकाएं जापानी खाना की ओर।
1: हाँ, आज बनाना सिखा रहे हैं सोयाबीन बर्गर।
3: ये है NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा। आप सभी को अभिजीत दाते की ओर से नमस्कार।
4: सभी सुनने वालों को प्रखर मिश्र की ओर से भी प्यार भरा नमस्कार।
3: आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है, इसलिए आज हम दलहन का उपयोग करके एक व्यंजन बनाना सिखाएंगे। आज का व्यंजन है सोयाबीन बर्गर, जिसमें हम मांस के स्थान पर सोयाबीन का उपयोग कर रहे हैं, जिसे खेत का मांस भी कहा जाता है।
4: और यह व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ अकीको वातानाबे।
5: कोनिचिवा, वातानाबे अकीको देस। क्यों शोकाई सुरु मामे नो हैमबर्गर वा मामे तो
3: ये कह रहे

0: नमस्कार, मैं हूं अकीको वातानाबे। आज हम सोयाबीन बर्गर बना रहे हैं जो बहुत पौष्टिक होते हैं। इसमें हम सोयाबीन के साथ उमामी यानी जायका बढ़ाने के लिए अच्छी तरह भुने हुए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। साथ में सजाएंगे मौसमी सब्जियां और ऊपर से डालेंगे एक खास सॉस, जिससे यह व्यंजन देखने में सुंदर और खाने में मजेदार बनेगा।
1: तो सबसे पहले आपको बता देते हैं चार लोगों के लिए यह व्यंजन बनाने की सामग्री। बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए 300 ग्राम उबले हुए सोयाबीन, 100 ग्राम प्याज, 10 ग्राम मक्खन, एक अंडा, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ी मिर्च और एक बड़ा चम्मच मैदा।
0: साथ में परोसने वाली सब्जियों के लिए ले लीजिए 100 ग्राम शिमेजी मशरूम, 4 ताजे शीताके मशरूम, एक टुकड़ा या लगभग 120 ग्राम कमल ककड़ी और 200 ग्राम दाईकॉन मूली।
1: और नींबू वाला सोया सॉस बनाने के लिए तैयार रखिए आधा नींबू, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस और आधा छोटा चम्मच चीनी। इसके अलावा बर्गर की टिक्कियों और सब्जियों को पकाने के लिए थोड़ा तेल भी चाहिए।
0: तो चलिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को महीन काटना है। इसके लिए उसे 3 मिलीमीटर के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए।
1: प्याज को काट लेने के बाद उसे भूनना है, तो एक फ्राइंग पैन गर्म कीजिए और उसमें मक्खन डालिए। आंच मध्यम रखिए। जब मक्खन लगभग आधा पिघल जाए तब प्याज डाल दीजिए।
0: ये कह रही है प्याज भूनते समय उसे पूरे पैन में फैला लीजिए। मक्खन से भूनने पर प्याज के अपने स्वाद में निखार आ जाता है और व्यंजन का उमामी यानी असली जायका बढ़ जाता है।
1: भूनते समय बीच बीच में प्याज के टुकड़ों को थोड़ा हिला लीजिए, वे धीरे धीरे पारदर्शी होने लगेंगे।
0: जब प्याज हल्का भूरा हो जाए तब उसे गैस से उतार लीजिए और एक थाली में फैला कर ठंडा होने दीजिए।
1: अब बारी है बर्गर की टिक्कियां बनाने की। आज हम डिब्बा बंद सोयाबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डिब्बा बंद सोयाबीन उपलब्ध ना हो तो आप सूखे सोयाबीन को उबाल सकते हैं।
0: इसके लिए 125 ग्राम सूखे सोयाबीन के दानों को ढेर सारे पानी में रात भर भिगो कर रखिए और फूले हुए दानों को सुबह एक पतीले में डालकर 3 से 4 घंटों तक हल्की आंच पर पकाइए। नर्म होने के बाद आपके पास 300 ग्राम उबले सोयाबीन के दाने तैयार हो जाएंगे।
1: अब उबले हुए सोयाबीन को मसलना है, लेकिन उससे पहले कुछ दाने अलग हटा लीजिए। इनसे हम बर्गर को सजाएंगे। हम 8 टिक्कियां बनाने वाले हैं, तो हर टिक्की के लिए 3 यानी कुल मिलाकर सोयाबीन के 24 दाने अलग रख लीजिए और बाकियों को मसल लीजिए।
0: उन्हें पूरी तरह मसलने की जरूरत नहीं है, कुछ टुकड़े बड़े रह सकते हैं।
1: मसलने के बाद नमक और मिर्च डालिए और लकड़ी के चम्मच से ही अच्छी तरह मिला लीजिए। इसके बाद एक अंडा फेंटिए और उसे भी मसले हुए दानों के साथ मिला दीजिए।
0: सारा अंडा एक साथ मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले सिर्फ 1/3 हिस्सा ही डालिए। जब वह अच्छी तरह मिल जाए तब दूसरा हिस्सा डालिए। अगर आप सारा अंडा एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा।
1: अंडा मिला लेने के बाद मैदा डालना है। मैदा मिलाने से टिक्कियां बनाना आसान हो जाएगा। और उसके बाद डाल दीजिए ठंडा भुना हुआ प्याज।
0: सब कुछ मिलाने के बाद टिक्कियां बनाने का मिश्रण तैयार है।
1: आज हम छोटी टिक्कियां बनाने वाले हैं, इसलिए मिश्रण को 8 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए और 1 सेंटीमीटर मोटाई की गोलाकार टिक्कियां तैयार कर लीजिए।
0: अब हम अलग रखे सोयाबीन के दानों से टिक्कियों को सजाएंगे। उन्हें इस तरह टिक्की में लगाइए कि वे उभरे हुए न रहें। आप सोयाबीन के दानों को आंखों की तरह लगाकर टिक्कियों पर चेहरे बना सकते हैं या उन्हें फूल की आकृति में लगा सकते हैं।
1: आज हमने फूल बनाए हैं। अब इन टिक्कियों को एक थाली पर रख लीजिए और साथ में परोसने वाली सब्जियां तैयार कर दीजिए।
0: आज हम शरद में मिलने वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास हैं 2 तरह के मशरूम और कमल ककड़ी। शिमेजी मशरूम का सख्त निचला हिस्सा काट दीजिए और मशरूमों को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। शीता के मशरूमों का भी सख्त निचला भाग काट दीजिए और मशरूमों को आधा काट लीजिए। कमल ककड़ी का छिलका उतारिए और मोटे टुकड़े काट लीजिए।
1: कमल ककड़ी के टुकड़े लगभग 7 मिलीमीटर मोटे होने चाहिए, इससे वे आसानी से पकेंगे।
0: इसके बाद दाईकॉन यानी बड़ी मूली का छिलका उतार कर उसे कद्दूकस कर लीजिए।
1: ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि मूली के रेशे टूट जाने चाहिए।
0: कसी हुई मूली में बहुत सारा पानी होता है, इसलिए उसे एक छल्ली में डालकर हल्के से निथार लीजिए, नहीं तो टिक्कियों में नमी आ जाएगी। मूली को दबाकर पानी मत निकालिएगा, उसे छलनी में रखा रहने दीजिए ताकि अतिरिक्त पानी अपने आप झर जाए।
1: बर्गर को जापानी स्वाद देने के लिए आज हम कद्दूकस की हुई मूली और नींबू वाले सोया सॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सॉस बनाने के लिए नींबू के रस में सोया सॉस मिला लीजिए और उसके बाद नींबू का खट्टापन और सोया सॉस के नमकीन स्वाद को हल्का करने के लिए थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। फिर इन्हें अच्छी तरह मिलाइए।
0: अब पकाना शुरू करते हैं। पहले सब्जियों की बारी।
1: फ्राइंग पैन को गर्म कीजिए और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालिए। जब तेल पूरे पैन में फैल जाए तब उसे मशरूम और कमल ककड़ी के टुकड़े के साथ बिछा दीजिए। इन्हें हिलाइए नहीं, कुछ देर पकने दीजिए। सारी सब्जियां डालने के बाद पैन पर ढक्कन लगा दीजिए और भाप में भून लीजिए।
0: लगभग एक मिनट बाद ढक्कन हटाकर सब्जियों को पलट लीजिए और ढक्कन फिर से लगाकर एक और मिनट के लिए भाप में भूनिए।
1: अब बारी है सोयाबीन की टिक्कियों की। फ्राइंग पैन को एक साफ कागज से पोंछ लीजिए और फिर से तेल डालिए। जब पैन गर्म हो जाए तब उसमें टिक्कियां रख दीजिए।
0: टिक्कियां नर्म हैं, इसलिए हिलाने पर आसानी से टूट सकती हैं। उन्हें हथेली पर रखकर थोड़ा ठीक कर लीजिए और फिर सोयाबीन के दानों की सजावट वाली सतह नीचे की तरफ रखते हुए पैन में रखकर पकाइए।
1: आठों टिक्कियां पैन में रखने के बाद आंच कम कर दीजिए और निचली सतह हल्की भूरी होने तक पकाइए। टिक्कियां नर्म हैं, इसलिए जब तक वे थोड़ी सख्त न हो जाएं उन्हें हिलाइएगा नहीं। उसके बाद उन्हें पलट लीजिए।
0: टिक्कियों को हल्की आंच पर पकाइए ताकि वे अंदर से कच्ची न रहें। फ्राइंग पैन पर ढक्कन लगा दीजिए और 2 मिनट तक पकाइए।
1: जब टिक्कियों में मौजूद अंडा पूरी तरह पक जाएगा तब टिक्कियां तैयार हो जाएंगी। उसके बाद उन्हें थाली में सजा सकते हैं।
0: तो एक थाली में 2 टिक्कियां साथ साथ इस तरह रखिए कि एक टिक्की दूसरी पर थोड़ी चढ़ी हुई हो। इस तरह रखने पर वे देखने में स्वादिष्ट लगती हैं।
1: इसके बाद टिक्कियों के आसपास मशरूम और कमल ककड़ी सजा दीजिए।
0: फिर कद्दूकस की हुई मूली को इस तरह रखिए कि उसका कुछ हिस्सा एक टिक्की के ऊपर रहे और खाने से पहले मूली पर नींबू वाला सोया सॉस डालकर परोसिए।
1: शरद में खाने के लिए बढ़िया ताजगी भरे जापानी स्वाद वाले सोयाबीन बर्गर तैयार हैं।
0: दोस्तों, आज हमने जो बर्गर बनाना सिखाया इसे आप तरह तरह के सॉस और सब्जियों के साथ खा सकते हैं। सोयाबीन की जगह आप दलहन की किसी दूसरी किस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये व्यंजन जरूर बनाकर देखिएगा।
2: वाइला जी, यह व्यंजन तो बनाने में आसान लग रहा है, मैं जरूर इसमें हाथ आजमाना चाहूंगी।
3: हाँ, जरूर बनाएं और हमें भी खिलाएं, और दोस्तों आप भी बनाकर देखें। बहरहाल अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वाइला कवानों को
2: और रोहिणी रमन को।
3: सायोनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानों का कोनिचिवा नमस्कार।
1: दोस्तों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: रोहिणी जी, देखिए मई महीने में खाने पीने की कितनी सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं ना?
1: हाँ, चाहे 50-60 येन की वृद्धि ही क्यों न हो, लेकिन खरीदारी के बाद पूरा बिल देखते ही काफी झटका लगता है।
0: हाँ, आजकल हमने बाहर खाना काफी कम कर दिया है और जितना हो सकता है घर पर ही बनाते हैं।
1: यह बात तो सही कहा आपने। मुझे पहले से तुलना करने में दिक्कत होती है क्योंकि जापान में इतना समय नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट का बिल पहले से ज्यादा आने तो लग गया है।
0: हाँ, ये तो है। तो घर पर रहते हुए जायकेदार खाने का आनंद लेने की हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, यानी आओ पकाएं जापानी खाना के अंतर्गत आज बनाना सीखेंगे एक नई विधि। तो पहले जल्दी से पत्रों की ओर चला जाए।
1: नेकी और पूछ। तो सबसे पहले है सुरेश अग्रवाल जी का पत्र, केसिंगा उड़ीसा से।
0: अच्छा,
1: लिखते हैं, 10 मई के चेरी के देश से कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों को पर्याप्त समय दिया जाना अत्यंत अच्छा लगा। विशेष रूप से श्रोता बहन अंजुला जी का अपनी ही आवाज में प्रतिक्रिया सुनना एक नया और सुखद अनुभव रहा। यद्यपि पूर्व में भी कुछ श्रोता ऐसा कर चुके हैं, फिर भी इस प्रस्तुति ने कार्यक्रम में एक अलग आत्मीयता जोड़ दी। कार्यक्रम में आपने उल्लेख किया कि भारत में लोग अपने केश बेचकर भी आय अर्जित करते हैं तथा यहाँ से बालों का निर्यात भी किया जाता है। इस विषय ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। मैंने आपकी वेबसाइट पर संबंधित क्लिप खोजने का प्रयास किया, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। कृपया मार्गदर्शन करें कि उक्त सामग्री वेबसाइट पर किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है।
0: सुरेश जी, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपकी मधुर आवाज में हमें कार्यक्रम में आपकी बेबाक राय सुनने का अवसर मिलेगा। तो आप भी जरूर भेजें और बाकी श्रोताओं से भी यही अनुरोध है। और जैसा आपने कहा कि ऑडियो क्लिप से कार्यक्रम में एक नई जान तो आ जाती है।
1: बालों से कमाई करने वाली क्लिप के बारे में आपका प्रश्न है और खेद है आप इसे नहीं ढूंढ पाई। आप अगर समाचारों पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे भी विशेष क्लिप का हिस्सा है। वहां पर यह वीडियो जिसका शीर्षक है झड़ते बाल भी करें कमाई, आपको दिख जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे देख पाएंगे।
0: जी हाँ। और अब देखिए, ये अगला पत्र है SB शर्मा जी का और ये लिखते हैं, NHK हिंदी सेवा के समाचार से पता चला कि ईरान और अमरीका समझौते के करीब पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया इस खुशखबरी के इंतजार में है। उम्मीद करते हैं कि यह समझौता जल्द होगा। भारत सहित दुनिया गैस और पेट्रोल ईंधन की कमी से परेशान है। अमेरिका द्वारा उत्पन्न ये संघर्ष पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। ईरान ने भी इस युद्ध में अपने 20 से ज्यादा शीर्ष नेताओं को खोया है और अब समझौते के लिए विवश हुआ है। उम्मीद है कि यह समझौता जल्द होगा और ईरान में अमन होगा तथा भारत जैसे देशों में महंगाई और विकास पटरी पर आएगी।
1: SB शर्मा जी, इतने समय बाद लिखने के लिए धन्यवाद। वाकई अमेरिका ईरान संघर्ष ने काफी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। आपने हाल की एक खबर सुनी होगी कि जापान में छपाई की स्याही की किल्लत के बीच एक जापानी कंपनी ने अपने कुछ स्नैक्स के पैकेट पर रंगों से छपाई न करने का फैसला लिया है। पैकेट को काला सफेद ही रखने का फैसला ले लिया है।
0: बताइए, किसे मालूम था कि इस संघर्ष से रंगों पेंट्स की भी किल्लत शुरू हो जाएगी। तो शर्मा जी, हम क्या आपसे पूरी दुनिया सहमत है कि संघर्ष तुरंत समाप्त होना चाहिए ताकि हम अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट सकें। शांति ही तरक्की की कुंजी है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद संकल्प लिया कि युद्ध कभी नहीं करेगा और यहाँ जापान के लोग भी शांति की ही हमेशा वकालत करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद झेला है कि युद्ध कभी किसी के विकास में सहायक नहीं हो सकता।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगला पत्र है पथिक जैन जी का। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंटवार्ता सुनाने के लिए बहुत बहुत आभार। इतने सरल और सहज व्यक्तित्व को सुनकर बहुत अच्छा लगा। पंकज जी द्वारा तीसरे भाग में खिचड़ी की उपयोगिता पर दी गई टिप्पणी बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छा,
1: एक कलाकार के लिए उसका शरीर ही एक उपकरण है और उसके पाचन को सही रखने के लिए खिचड़ी उपयोगी होती है। मेरा एक सुझाव है कि ऐसी भेंट वार्ताओं को डाउनलोड कर सकने का कोई लिंक साझा करें और कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो।
0: पथिक जी, कार्यक्रम सुनने और सराहने के लिए आभार। व्यक्तित्व के धनी पंकज जी की बातों में जो फलसफा था वो सभी को पसंद आया होगा, ऐसी आशा है।
1: डाउनलोड करने की सुविधा तो संभव नहीं है अभी, हम इस

0: भेंट वार्ता का वीडियो तैयार करने में जुटे हैं जो लंबे समय तक देखा जा सकेगा, तो कृपया थोड़ा इंतजार करें। वॉइस मैसेज की सुविधा तो उपलब्ध है, आप जरूर एक बार कोशिश करें भेजने की।
1: जी हाँ, और अब देखिए ये अगला पत्र है राम कुमार नीरज जी का। लिखते हैं, 10 मई के चरी के देश से की प्रस्तुति सचमुच मन को छू लेने वाली थी। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रोताओं द्वारा भेजे गए पत्रों को जिस आत्मीयता और अपनेपन के साथ प्रस्तुत किया गया, वो सुनकर ऐसा लगा मानो दूर बैठे लोग एक ही परिवार के सदस्य हों। आज के तेज और भागदौड़ भरे समय में जहां लोगों के पास एक दूसरे की बातें सुनने तक का समय कम होता जा रहा है, वहां चेरी के देश से जैसा कार्यक्रम श्रोताओं के दिलों को जोड़ने का एक सुंदर माध्यम बन गया है। कार्यक्रम में पढ़े गए पत्रों के माध्यम से श्रोताओं की संवेदनाएं, उनके विचार, उनकी खुशियां और उनके अनुभव सुनने को मिले। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर पत्र में अपनेपन की एक सच्ची भावना थी। आपकी प्रस्तुति शैली भी अत्यंत मधुर और प्रभावशाली थी। कार्यक्रम की इंद्रधनुषी प्रस्तुति ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। कभी संगीत की मधुरता, कभी श्रोताओं की भावनाएं और कभी जापान तथा भारत के सांस्कृतिक संबंधों की झलक, सब कुछ मिलकर कार्यक्रम को यादगार बना रहे थे। साथ ही लिखते हैं, मैं स्वयं भी रेडियो के माध्यम से लंबे समय से जुड़ा रहा हूं और समाज, पर्यावरण तथा मानवीय विषयों पर अपने विचार साझा करता रहता हूं। हाल में मैंने हिरोशिमा और पोखरण की पृष्ठभूमि पर आधारित एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मानवता और शांति का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इसलिए जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने वाले आपके कार्यक्रम मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं।
0: रामकुमार नीरज जी, आपका पत्र प्रेम और स्नेह से सराबोर है। यह मंच आपका और सभी श्रोताओं का है, तो जाहिर है इसमें आप लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहती है सभी पत्र दिल से पढ़ें और श्रोताओं के मन में जो चल रहा है उसे भांपने का प्रयास करें। अगर इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा भी खरा उतरते हैं तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे।
1: हिरोशिमा और पोखरण की पृष्ठभूमि में आपकी रिपोर्ट अत्यंत दिलचस्प प्रतीत होती है, तो अगली बार जरूर विस्तार से बताएं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। और अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में।
1: रोहिणी जी, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की कि आज एक जायकेदार रेसिपी साझा करेंगे, तो चलते हैं आओ पकाएं जापानी खाना की ओर।
0: हाँ, आज बनाना सिखा रहे हैं सोयाबीन बर्गर।

0: ये है NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा। आप सभी को अभिजीत दाते की ओर से नमस्कार।
1: सभी सुनने वालों को प्रखर मिश्र की ओर से भी प्यार भरा नमस्कार।
0: आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है, इसलिए आज हम दलहन का उपयोग करके एक व्यंजन बनाना सिखाएंगे। आज का व्यंजन है सोयाबीन बर्गर, जिसमें हम मांस के स्थान पर सोयाबीन का उपयोग कर रहे हैं, जिसे खेत का मांस भी कहा जाता है।
1: और यह व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ अकीको वातानाबे।
2: कोनिच्वा, वातानाबे अकीको देसु। क्यो शोकाई सुरु मामे नो हांबागु वा
0: ये कह रही हैं नमस्कार, मैं हूँ अकीको वातानाबे। आज हम सोयाबीन बर्गर बना रहे हैं जो बहुत पौष्टिक होते हैं। इसमें हम सोयाबीन के साथ उमामी यानी जायका बढ़ाने के लिए अच्छी तरह भुने हुए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। साथ में सजाएंगे मौसमी सब्जियां और ऊपर से डालेंगे एक खास सॉस, जिससे यह व्यंजन देखने में सुंदर और खाने में मजेदार बनेगा।
1: तो सबसे पहले आपको बता देते हैं चार लोगों के लिए यह व्यंजन बनाने की सामग्री। बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए 300 ग्राम उबले हुए सोयाबीन, 100 ग्राम प्याज, 10 ग्राम मक्खन, एक अंडा, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ी मिर्च और एक बड़ा चम्मच मैदा।
0: साथ में परोसने वाली सब्जियों के लिए ले लीजिए 100 ग्राम शिमेजी मशरूम, 4 ताजे शीताके मशरूम, एक टुकड़ा या लगभग 120 ग्राम कमल ककड़ी और 200 ग्राम दाईकॉन मूली।
1: और नींबू वाला सोया सॉस बनाने के लिए तैयार रखिए आधा नींबू, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस और आधा छोटा चम्मच चीनी। इसके अलावा बर्गर की टिक्कियों और सब्जियों को पकाने के लिए थोड़ा तेल भी चाहिए।
0: तो चलिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को महीन काटना है, इसके लिए उसे 3 मिलीमीटर के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए।
1: प्याज को काट लेने के बाद उसे भूनना है, तो एक फ्राइंग पैन गर्म कीजिए और उसमें मक्खन डालिए। आंच मध्यम रखिए। जब मक्खन लगभग आधा पिघल जाए तब प्याज डाल दीजिए।
0: ये कह रही हैं प्याज भूनते समय उसे पूरे पैन में फैला लीजिए। मक्खन से भूनने पर प्याज के अपने स्वाद में निखार आ जाता है और व्यंजन का उमामी यानी असली जायका बढ़ जाता है।
1: भूनते समय बीच बीच में प्याज के टुकड़ों को थोड़ा हिला लीजिए, वे धीरे धीरे पारदर्शी होने लगेंगे।
0: जब प्याज हल्का भूरा हो जाए तब उसे गैस से उतार लीजिए और एक थाली में फैलाकर ठंडा होने दीजिए।
1: अब बारी है बर्गर की टिक्कियां बनाने की। आज हम डिब्बा बंद सोयाबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डिब्बा बंद सोयाबीन उपलब्ध ना हो तो आप सूखे सोयाबीन को उबाल सकते हैं।
0: इसके लिए 125 ग्राम सूखे सोयाबीन के दानों को ढेर सारे पानी में रात भर भिगो कर रखिए और फूले हुए दानों को सुबह एक पतीले में डालकर 3 से 4 घंटों तक हल्की आंच पर पकाइए। नर्म होने के बाद आपके पास 300 ग्राम उबले सोयाबीन के दाने तैयार हो जाएंगे।
1: अब उबले हुए सोयाबीन को मसलना है, लेकिन उससे पहले कुछ दाने अलग हटा लीजिए। इनसे हम बर्गर को सजाएंगे। हम 8 टिक्कियां बनाने वाले हैं, तो हर टिक्की के लिए 3 यानी कुल मिलाकर सोयाबीन के 24 दाने अलग रख लीजिए और बाकियों को मसल लीजिए।
0: उन्हें पूरी तरह मसलने की जरूरत नहीं है, कुछ टुकड़े बड़े रह सकते हैं।
1: मसलने के बाद नमक और मिर्च डालिए और लकड़ी के चम्मच से ही अच्छी तरह मिला लीजिए। इसके बाद एक अंडा फेंटिए और उसे भी मसले हुए दानों के साथ मिला दीजिए।
0: सारा अंडा एक साथ मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले सिर्फ 1/3 हिस्सा ही डालिए। जब वह अच्छी तरह मिल जाए तब दूसरा हिस्सा डालिए। अगर आप सारा अंडा एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा।
1: अंडा मिला लेने के बाद मैदा डालना है। मैदा मिलाने से टिक्कियां बनाना आसान हो जाएगा। और उसके बाद डाल दीजिए ठंडा भुना हुआ प्याज।
0: सब कुछ मिलाने के बाद टिक्कियां बनाने का मिश्रण तैयार है।
1: आज हम छोटी टिक्कियां बनाने वाले हैं, इसलिए मिश्रण को 8 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए और 1 सेंटीमीटर मोटाई की गोलाकार टिक्कियां तैयार कर लीजिए।
0: अब हम अलग रखे सोयाबीन के दानों से टिक्कियों को सजाएंगे। उन्हें इस तरह टिक्की में लगाइए कि वे उभरे हुए न रहें। आप सोयाबीन के दानों को आंखों की तरह लगाकर टिक्कियों पर चेहरे बना सकते हैं या उन्हें फूल की आकृति में लगा सकते हैं।
1: आज हमने फूल बनाए हैं। अब इन टिक्कियों को एक थाली पर रख लीजिए और साथ में परोसने वाली सब्जियां तैयार कर दीजिए।
0: आज हम शरद में मिलने वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास हैं दो तरह के मशरूम और कमल ककड़ी। शिमेजी मशरूम का सख्त निचला हिस्सा काट दीजिए और मशरूमों को तीन हिस्सों में बांट लीजिए। शीता के मशरूमों का भी सख्त निचला भाग काट दीजिए और मशरूमों को आधा काट लीजिए। कमल ककड़ी का छिलका उतारिए और मोटे टुकड़े काट लीजिए।
1: कमल ककड़ी के टुकड़े लगभग 7 मिलीमीटर मोटे होने चाहिए, इससे वे आसानी से पकेंगे।
0: इसके बाद दाइकोन यानी बड़ी मूली का छिलका उतारकर उसे कद्दूकस कर लीजिए।
1: ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि मूली के रेशे टूट जाने चाहिए।
0: कसी हुई मूली में बहुत सारा पानी होता है, इसलिए उसे एक छलनी में डालकर हल्के से निथार लीजिए, नहीं तो टिक्कियों में नमी आ जाएगी। मूली को दबाकर पानी मत निकालिएगा, उसे छलनी में रखा रहने दीजिए ताकि अतिरिक्त पानी अपने आप झर जाए।
1: बर्गर को जापानी स्वाद देने के लिए आज हम कद्दूकस की हुई मूली और नींबू वाले सोय सॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सॉस बनाने के लिए नींबू के रस में सोय सॉस मिला लीजिए और उसके बाद नींबू का खट्टापन और सोय सॉस के नमकीन स्वाद को हल्का करने के लिए थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। फिर इन्हें अच्छी तरह मिलाइए।
0: अब पकाना शुरू करते हैं, पहले सब्जियों की बारी।
1: फ्राइंग पैन को गर्म कीजिए और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालिए। जब तेल पूरे पैन में फैल जाए तब उसे मशरूम और कमल ककड़ी के टुकड़े के साथ बिछा दीजिए। इन्हें हिलाइए नहीं, कुछ देर पकने दीजिए। सारी सब्जियां डालने के बाद पैन पर ढक्कन लगा दीजिए और भाप में भून लीजिए।
0: लगभग 1 मिनट बाद ढक्कन हटाकर सब्जियों को पलट लीजिए और ढक्कन फिर से लगाकर 1 और मिनट के लिए भाप में भूनिए।
1: अब बारी है सोयाबीन की टिक्कियों की। फ्राइंग पैन को एक साफ कागज से पोंछ लीजिए और फिर से तेल डालिए। जब पैन गर्म हो जाए तब उसमें टिक्कियां रख दीजिए।
0: टिक्कियां नर्म हैं, इसलिए हिलाने पर आसानी से टूट सकती हैं। उन्हें हथेली पर रखकर थोड़ा ठीक कर लीजिए और फिर सोयाबीन के दानों की सजावट वाली सतह नीचे की तरफ रखते हुए पैन में रखकर पकाइए।
1: 8 टिक्कियां पैन में रखने के बाद आंच कम कर दीजिए और निचली सतह हल्की भूरी होने तक पकाइए। टिक्कियां नर्म हैं, इसलिए जब तक वे थोड़ी सख्त न हो जाएं उन्हें हिलाइएगा नहीं। उसके बाद उन्हें पलट लीजिए।
0: टिक्कियों को हल्की आंच पर पकाइए ताकि वे अंदर से कच्ची न रहें। फ्राइंग पैन पर ढक्कन लगा दीजिए और 2 मिनट तक पकाइए।
1: जब टिक्कियों में मौजूद अंडा पूरी तरह पक जाएगा तब टिक्कियां तैयार हो जाएंगी। उसके बाद उन्हें थाली में सजा सकते हैं।
0: तो एक थाली में 2 टिक्कियां साथ साथ इस तरह रखिए कि एक टिक्की दूसरी पर थोड़ी चढ़ी हुई हो। इस तरह रखने पर वे देखने में स्वादिष्ट लगती हैं।
1: इसके बाद टिक्कियों के आसपास मशरूम और कमल ककड़ी सजा दीजिए।
0: फिर कद्दूकस की हुई मूली को इस तरह रखिए कि उसका कुछ हिस्सा एक टिक्की के ऊपर रहे और खाने से पहले मूली पर नींबू वाला सोया सॉस डालकर परोसिए।
1: शरद में खाने के लिए बढ़िया ताजगी भरे जापानी स्वाद वाले सोयाबीन बर्गर तैयार हैं।
0: दोस्तों, आज हमने जो बर्गर बनाना सिखाया इसे आप तरह तरह के सॉस और सब्जियों के साथ खा सकते हैं। सोयाबीन की जगह आप दलहन की किसी दूसरी किस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये व्यंजन जरूर बनाकर देखिएगा।
3: वाइला जी, यह व्यंजन तो बनाने में आसान लग रहा है, मैं जरूर इसमें हाथ आजमाना चाहूंगी।
4: हाँ, जरूर बनाएं और हमें भी खिलाएं, और दोस्तों आप भी बनाकर देखें। बहरहाल अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वाइला कवानों को
3: और रोहिणी रमन को।
4: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। सामईन की अपनी महफिल में सामईन का इस्तकबाल करते हैं।
1: आज की महफिल में शामिल है एक इंटरव्यू और एक खास ऐलान।
0: लेकिन सबसे पहले है इंटरव्यू।
2: NHK के नए माली साल से हमारी उर्दू सर्विस में एक नए मुतरजिम सैयद शबर हुसैन शाह शरीक हुए हैं। आज खलील शिराजी साहब महफिल में दीवान खाना में उनका शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं।
1: जी शबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दीवान खाना में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुरू में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जापान आपका कैसे आना हुआ और कब आना हुआ?
3: जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। मैं मास्टर स्टूडेंट था और हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट कंट्री को टारगेट किया हुआ था कि इस कंट्री में जाऊंगा और उस कंट्री में। जापान जो था बड़ा मतलब एक तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसके ज़रिए मैं आया इधर। मैं उस पे काफ़ी ट्राई की, एक साल पहले भी की थी, दूसरे साल जब किया तो लकीली मेरा एडमिशन हो गया इधर जापान में।
1: सब्जेक्ट आपका कौन सा था और एग्ज़ाम कौन सा था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे?
3: मेरी एजुकेशन

0: तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड और उसमें सॉइल साइंस से मेजर है, मैक्स स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू हम आए थे। उसका एक इंटरव्यू होता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर वो क्लियर हो जाए तो देन आप आ सकते हैं और स्कॉलरशिप पे।
1: तो स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या चीज़ें हुकूमत की तरफ से मिलती हैं, या मेरे ख्याल में हुकूमत जापान की तरफ से सर?
0: जी जी ऐसे ही है, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको एक स्टाइपन देते हैं, उसमें आपने सारा अपना लिविंग भी कर सकते हैं और बाकी ट्यूशन फी एक वो सारी एग्जम्पशन होती है।
1: अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप में यानी कि आपके कोई दबाव नहीं है, आप आसानी से आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं स्टाइपेंड से?
0: हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि जब वहाँ की इनकम और उस लिहाज से अखराजात भी हैं तो इधर की स्टाइपन वो ऑलरेडी ये सारा कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। हाँ ये रिसेंटली 1-2 साल में काफ़ी महंगाई हो गई है, उस पर अभी मतलब जितना स्टाइपन है शायद थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अभी भी गुजारा कर सकते हैं आप जितना वो स्टाइपन देते हैं ना।
1: अच्छा, तो आप उसमें अपीयर हुए और उसमें कामयाब हुए, उसके बाद जापान आए, तो कहाँ पे दाखला लिया और क्या करना चाह रहे थे, मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल, क्या?
0: जी मैं नागासाकी यूनिवर्सिटी में आया था और पीएचडी के
1: किस साल
0: लिए,
1: की बात है?
0: ये 2021 2021 में
1: अच्छा,
0: मैं जब किसी दोस्त को बताता कि मैं नागासाकी जाने लगूँ तो पहला सवाल ये होता कि वो जिधर एटम बम गिरा
1: जी,
0: था
1: पाकिस्तान में ये दो शहर बहुत मशहूर हैं।
0: हिरोशिमा
1: सही
0: नागासाकी,
1: सही,
0: तो मैं कहता हाँ उधर जाने लगूँ। वो कहते हैं बच के रहना, उधर अभी भी रेज हैं, वो पाकिस्तान में अभी तक है ना वो
1: मिसकंसेप्शन
0: कंसेप्ट।
1: है जी,
0: हाँ
1: बिल्कुल इस हवाले से सही।
0: तो जैसे मैं जापान में आया तो नागासाकी में देखा बिल्कुल वो उस तरह से रेज वगैरह का कुछ नहीं है, रेज है ही ना,
1: खत्म, जी,
0: ख़त्म हो गई है। तो बाकी पानी भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है और बहुत पुरसकून जगह है नागासाकी।
1: तो
0: एज
1: पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं?
0: मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ।
1: अच्छा, तो यानी पहलवानों और लजीज खानों के लिए मशहूर है,
0: जी जी ऐसे ही,
1: तो कैसा लगा जापान आके? पहलवान तो शायद आपको नजर आएंगे, तो लजीज खानों के बारे में बताइए, क्या फर्क आपने फील किया, इंप्रेशन क्या था आपका?
0: खानों का एक तो हमारा वो थोड़ा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी है उस लिहाज से, और दूसरा वाकियन अभी तक खानों को मिस ही करते हैं। पाकिस्तान के खाने और तरह से हैं और जापान के खाने बिल्कुल डिफरेंट किस्म
1: क्या
0: के
1: फर्क
0: हैं।
1: है मसलन?
0: मसलन
1: मसाले, मिर्च की
0: हम
1: कमी?
0: मसाले, मिर्च और हैवी चीज़ें, फुल घी डाल के और तड़का लगा के वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जापान में हेल्दी तो हैं लेकिन उस तरह से मसाले मिर्च नहीं है, तो
1: अच्छा,
0: इस वजह से मज़ा नहीं आता।
1: तो जापान का इंतखाब आपने क्यों किया? आप यूरोप जा सकते थे, आप अमेरिका जा सकते थे, आप पाकिस्तान में ही कर सकते थे, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आपने पीएचडी के लिए जापान का इंतखाब क्यों किया?
0: मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप देख रहा था तो एशिया में मैं ज़्यादा देख रहा था, और जापान एक लिहाज से बिल्कुल एशिया का समझ लें ऐसी जगह के सारे यहाँ आना पसंद करते हैं। मैं जब एडमिशन हो भी चुका था तब भी मैं किसी को बताता कि मैं जापान जाने लगूँ तो एक अलग तरह से वो मुझे देखते, इज्जत देते कि वो जापान, जापान का एक नाम है सिविलाइजेशन के लिहाज से और तरक्की के लिहाज से, तो इस वजह से मेरा भी ज़्यादा दिल यही था कि मैं जापान जाऊँ।
1: पाकिस्तान में आप तकरीबन 16 साल पढ़ते रहे, फिर
0: जी
1: उसके बाद आप यहाँ पे आए,
0: जी जी
1: तो क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ तालीमी निज़ाम में, जो तालीम का तरीका है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि जापान आगे निकल रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में, और एग्रीकल्चर भी इज़ आई थिंक नो एक्सेप्शन?
0: जी जी ऐसे ही है, मेन वजह यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान में है उसमें ज़्यादातर थोरेटिकल चीज़ें हैं और सिर्फ हम वही पुराने अंदाज में लेके चल रहे हैं, वही नोट्स हैं और पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, चलते हैं नहीं चलते, मतलब हम बहुत रिसर्च के लिहाज से उस तरह से काम नहीं कर रहे और उसकी उस तरह पब्लिकेशन भी नहीं होती। और लेकिन जापान उसके लहाज से मतलब बहुत तरक्की याफ्ता है और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करते हैं और इनकी रिसर्च दुनिया में मानी जाती है, बहुत स्लो अंदाज़ में, स्लो एंड स्टेडी अंदाज़ में, लेकिन उसको बेहतरीन अंदाज़ में वो रिसर्च आउटकम लेके आते हैं, इस वजह से शायद
1: जल्दी नहीं करते?
0: जल्दी नहीं करते।
1: अच्छा,
0: हम शायद थोड़े से शॉर्टकट भी ले लेते हैं कि जल्दी आउटकम आए और बस पब्लिकेशन ले लें, लेकिन जापान में बहुत स्लो लेके चलते हैं और उसका एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इधर क्या बेहतरी है और इसको किस तरह करें और फिर जो आउटकम निकलती है और वो वाकयान जो है वो दुनिया में सभी में मानी जाती है कि ये जापान में काम हुआ है।
1: सही। तो आपका रिसर्च किस हवाले से था?
0: मेरी रिसर्च इन्वायरमेंटल साइंस में जो है वो सॉइल में जो हैवी मेटल कंटेमिनेशन हो जाती है, ये रिसेंटली जो

0: इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी वजह से दूसरे जो वेस्ट वगैरह हैं उसकी वजह से मिट्टी में और पानी में
1: आलूदगी होती है।
0: आलूदगी होती जा रही है,
1: अच्छा
0: तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगर आलूदगी वाली ज़मीन पे अगर हम पैदावार कर लें, वो अब कंटेमिनेशन उस फूड में आ सकती है,
1: सही।
0: अगर वो हम खाएंगे तो वो हमारे जिस्म तक आ जाएगी और उसकी बहुत कार्सिनोजेनिक मतलब बहुत सीवियर डिजीज़ेज़ है, तो उसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके हवाले से मेरी रिसर्च थी पीएचडी में।
1: अच्छा, गुजरांवाला मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये मसला वहाँ पे भी होगा। क्या समझते हैं आपके इस जो इस रिसर्च है, इससे उसमें कोई फ़ायदा होगा, आप उसको यूटिलाइज करेंगे एक्चुअल ग्राउंड पे?
0: गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, और जैसे जापान में एक तरह से आलूदगी जो इंडस्ट्री से निकलती है उसको कंट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा उस तरह से मैनेज नहीं किया जाता, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा आलूदगी हो रही है। अभी आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा मसला है उधर पानी का, और फिर वो पानी जो मिट्टी में जाता है वो मिट्टी भी आलूदगी हो जाती है। ये रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला अगर उधर काम करने का तो इसको जो मैंने यहाँ रिसर्च की है पढ़े उसको उधर करेंगे,
1: इस्तेमाल में लाएंगे और
0: इस्तेमाल में
1: लोगों को
0: लाएंगे।
1: इससे फ़ायदा होगा
0: जी
1: डेफिनेटली। अच्छा, तो अब अगर आप वापस जाते हैं, लेट सपोज़ आप इसी काम के लिए जाते हैं जापान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज़ को मिस करेंगे जापान का, या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद आएंगी वहाँ पे?
0: सफाई के लिहाज से मतलब जापान काफ़ी ज़्यादा साफ है, रोड हर जगह मतलब टॉयलेट, इवन टॉयलेट भी बहुत साफ़ है, और दूसरा डिसिप्लिन लाइफ है बहुत ज़्यादा, हम उधर थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं काफ़ी चीज़ों में, सच्चाई ईमानदारी ये वैसे जापान मशहूर है, तो ये भी चीज़ें काफ़ी मतलब के मिस करूँगा, क्योंकि उधर थोड़ा सा हमारा रहना सहना बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से होता है, इधर बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, हर चीज़ हर काम एक वक्त पे हो रहा
1: तो शुरू में कोई मुश्किलात आपको पेश आई है, जैसे कि हर चीज़ वक्त पे? मुझे तो काफ़ी फील हुआ था, और
0: है।
1: डिसिप्लिन भी थोड़ा सा भारी गुजरता है बंदा, एक साल
0: हाँ
1: तो लेता है।
0: यस,
1: तो आपको कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई थी?
0: मैं जिस टाइम आया था 2021 में, तो उस टाइम ये कोरोना का अभी एंड ही हो रहा था, मेरी शायद फर्स्ट फ्लाइट थी जो इधर लैंड हुई थी, उसके बाद दोबारा वैसे बैन लग गया
1: सही सही,
0: था।
1: ओमिक्रॉन आ गया था मेरे ख्याल में,
0: हाँ
1: शायद उन दिनों की बात।
0: हाँ हाँ वही, मतलब एक ही फ़्लाइट आई थी और उसमें मैं आ गया, मुझे प्रोफेसर भी कहता तुम बड़े लकी
1: सही।
0: हो, उससे पहले भी बंद थी और उसके बाद भी 1-2 महीने बंद हो गई थी, तो बहरहाल मैं आया, और पहले तो 14 दिन का इधर क्वारंटाइन था, वो तो मैं चलो अकेला रह लिया, फिर जब नागासाकी गया और मतलब कि बिल्कुल अकेला, उधर पाकिस्तानी भी नहीं था यूनिवर्सिटी में मेरे, ना पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ, मतलब एक तनहा ज़िंदगी, और पाकिस्तान थोड़ी सी सोशल लाइफ है, यहाँ तो
1: हर बंदा अपने काम में मगन।
0: मगन है और बहुत प्राइवेट लाइफ, मतलब कोई उस टाइम तो एक फ़ासला बना लेते, चलते भी
1: हाँ हाँ वाकई
0: फ़ासला
1: वो
0: बना
1: भी
0: लेते
1: ज़्यादा
0: थे
1: हो
0: कि
1: गया था।
0: हाँ
1: सही।
0: वो वक्त तो ऐसे मुझे लगा मैं किधर आ गया हूँ, तो काफ़ी शुरू में डिप्रेशन भी होने लगा, मतलब 1-2 माह मैं बिल्कुल परेशान था कि मैं किधर आ गया हूँ, कोई खास कम्युनिकेशन नहीं है, एक तो लैंग्वेज बहुत
1: तो लैंग्वेज
0: बड़ा
1: सीख पाए या नहीं, इसके बारे में बताइए, जापानी ज़बान?
0: मैंने कोशिश तो बहुत की, यूनिवर्सिटी में भी क्लासें कुछ लीं, एक N5 लेवल मैं कह सकता हूँ कि मुझे आ गया, मतलब कि बेसिक बहुत बेसिक जो है वो मैं समझ सकता हूँ।
1: तो अभी बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं पाकिस्तान में, खासकर स्टूडेंट जो जापान आना चाहते हैं, खास तौर पे जो आपका जो स्कॉलरशिप है मैक्स का स्कॉलरशिप, इसके थ्रू आना चाहते हैं, जो ताकि वो चाहते हैं कि फ्री में उनको एजुकेशन भी मिल जाए, एक्सपोजर भी हो जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो उसके दो वेज हैं, एक एम्बेसी ट्रैक है एक यूनिवर्सिटी ट्रैक, एम्बेसी ट्रैक जो है ये यही अप्रैल मई में अभी जापान एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनकी वेबसाइट पे वो अनाउंस कर देते हैं, अभी ओपन हो गए, तो सबसे पहले तो उसमें 80% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर में या मास्टर्स में,
1: सही।
0: अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं बैचलर में, और अगर पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स में आपके 80+ मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं देन तो जापान आपको पक्का ले लेगा,
1: सही।
0: मतलब अच्छी प्रोफाइल को पक्का ले लेता है, तो उसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो उसी वेबसाइट पे होंगे, उनको फिल आउट करके आपने इस्लामाबाद भेजने होते हैं एम्बेसी को, फिर उसमें वो रिक्रूट करते हैं और कुछ कुछ शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर कुछ का इंटरव्यू या टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाता है और फिर आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, ये है एम्बेसी ट्रैक जो है स्कॉलरशिप मैक्स, और दूसरा
1: ये एक तरीका है।
0: ये एक
1: अच्छा, अब
0: तरीका
1: एक
0: है,
1: दूसरा तरीका आप बता
0: अब
1: रहे
0: दूसरा तरीका है
1: हैं। जी
0: वो भी मैक्स ही है लेकिन वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है,
1: अच्छा,

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: दोस्तों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोनिचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब और आओ पकाएं जापानी खाना।
0: रोहिणी जी, देखिए मई महीने में खाने पीने की कितनी सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं ना?
1: हाँ, चाहे 50-60 येन की वृद्धि ही क्यों न हो, लेकिन खरीदारी के बाद पूरा बिल देखते ही काफी झटका लगता है।
0: हाँ, आजकल हमने बाहर खाना काफी कम कर दिया है और जितना हो सकता है घर पर ही बनाते हैं।
1: यह बात तो सही कहा आपने। मुझे पहले से तुलना करने में दिक्कत होती है क्योंकि जापान में इतना समय नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट का बिल पहले से ज्यादा आने तो लग गया है।
0: हाँ, ये तो है। तो घर पर रहते हुए जायकेदार खाने का आनंद लेने की हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, यानी आओ पकाएं जापानी खाना के अंतर्गत आज बनाना सीखेंगे एक नई विधि। तो पहले जल्दी से पत्रों की ओर चला जाए।
1: नेकी और पूछ। तो सबसे पहले है सुरेश अग्रवाल जी का पत्र, केसिंगा उड़ीसा से।
0: अच्छा,
1: लिखते हैं, 10 मई के चेरी के देश से कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्रों को पर्याप्त समय दिया जाना अत्यंत अच्छा लगा। विशेष रूप से श्रोता बहन अंजुला जी का अपनी ही आवाज में प्रतिक्रिया सुनना एक नया और सुखद अनुभव रहा। यद्यपि पूर्व में भी कुछ श्रोता ऐसा कर चुके हैं, फिर भी इस प्रस्तुति ने कार्यक्रम में एक अलग आत्मीयता जोड़ दी। कार्यक्रम में आपने उल्लेख किया कि भारत में लोग अपने केश बेचकर भी आय अर्जित करते हैं तथा यहाँ से बालों का निर्यात भी किया जाता है। इस विषय ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। मैंने आपकी वेबसाइट पर संबंधित क्लिप खोजने का प्रयास किया, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। कृपया मार्गदर्शन करें कि उक्त सामग्री वेबसाइट पर किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है।
0: सुरेश जी, हम तो उस दिन का इंतजार

0: कर रहे हैं जब आपकी मधुर आवाज में हमें कार्यक्रम में आपकी बेबाक राय सुनने का अवसर मिलेगा। तो आप भी जरूर भेजें और बाकी श्रोताओं से भी यही अनुरोध है। और जैसा आपने कहा कि ऑडियो क्लिप से कार्यक्रम में एक नई जान तो आ जाती है।
1: बालों से कमाई करने वाली क्लिप के बारे में आपका प्रश्न है और खेद है आप इसे नहीं ढूंढ पाई। आप अगर समाचारों पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे भी विशेष क्लिप का हिस्सा है। वहां पर यह वीडियो जिसका शीर्षक है झड़ते बाल भी करें कमाई आपको दिख जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे देख पाएंगे।
0: जी हाँ, और अब देखिए ये अगला पत्र है SB शर्मा जी का और ये लिखते हैं, NHK हिंदी सेवा के समाचार से पता चला कि ईरान और अमेरिका समझौते के करीब पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया इस खुशखबरी के इंतजार में है। उम्मीद करते हैं कि यह समझौता जल्द होगा। भारत सहित दुनिया गैस और पेट्रोल ईंधन की कमी से परेशान है। अमेरिका द्वारा उत्पन्न ये संघर्ष पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। ईरान ने भी इस युद्ध में अपने 20 से ज्यादा शीर्ष नेताओं को खोया है और अब समझौते के लिए विवश हुआ है। उम्मीद है कि यह समझौता जल्द होगा और ईरान में अमन होगा तथा भारत जैसे देशों में महंगाई और विकास पटरी पर आएगी।
1: SB शर्मा जी, इतने समय बाद लिखने के लिए धन्यवाद। वाकई अमेरिका ईरान संघर्ष ने काफी देशों को मुश्किल में डाल दिया है। आपने हाल की एक खबर सुनी होगी कि जापान में छपाई की स्याही की किल्लत के बीच एक जापानी कंपनी ने अपने कुछ स्नैक्स के पैकेट पर रंगों से छपाई न करने का फैसला लिया है। पैकेट को काला सफेद ही रखने का फैसला ले लिया है।
0: बताइए, किसे मालूम था कि इस संघर्ष से रंगों पेंट्स की भी किल्लत शुरू हो जाएगी। तो शर्मा जी, हम क्या आपसे पूरी दुनिया सहमत है कि संघर्ष तुरंत समाप्त होना चाहिए ताकि हम अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट सकें। शांति ही तरक्की की कुंजी है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद संकल्प लिया कि युद्ध कभी नहीं करेगा और यहाँ जापान के लोग भी शांति की ही हमेशा वकालत करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद झेला है कि युद्ध कभी किसी के विकास में सहायक नहीं हो सकता।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगला पत्र है पथिक जैन जी का। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंटवार्ता सुनाने के लिए बहुत बहुत आभार। इतने सरल और सहज व्यक्तित्व को सुनकर बहुत अच्छा लगा। पंकज जी द्वारा तीसरे भाग में खिचड़ी की उपयोगिता पर दी गई टिप्पणी बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छा,
1: एक कलाकार के लिए उसका शरीर ही एक उपकरण है और उसके पाचन को सही रखने के लिए खिचड़ी उपयोगी होती है। मेरा एक सुझाव है कि ऐसी भेंट वार्ताओं को डाउनलोड कर सकने का कोई लिंक साझा करें और कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो।
0: पथिक जी, कार्यक्रम सुनने और सराहने के लिए आभार। व्यक्तित्व के धनी पंकज जी की बातों में जो फलसफा था वो सभी को पसंद आया होगा, ऐसी आशा है।
1: डाउनलोड करने की सुविधा तो संभव नहीं है। अभी हम इस भेंट वार्ता का वीडियो तैयार करने में जुटे हैं जो लंबे समय तक देखा जा सकेगा, तो कृपया थोड़ा इंतजार करें। वॉइस मैसेज की सुविधा तो उपलब्ध है, आप जरूर एक बार कोशिश करें भेजने की।
0: जी हाँ, और अब देखिए अगला पत्र है रामकुमार नीरज जी का। लिखते हैं, 10 मई के चरी के देश से की प्रस्तुति सचमुच मन को छू लेने वाली थी। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रोताओं द्वारा भेजे गए पत्रों को जिस आत्मीयता और अपनेपन के साथ प्रस्तुत किया गया वो सुनकर ऐसा लगा मानो दूर बैठे लोग एक ही परिवार के सदस्य हों। आज के तेज और भागदौड़ भरे समय में जहां लोगों के पास एक दूसरे की बातें सुनने तक का समय कम होता जा रहा है, वहां चेरी के देश से जैसा कार्यक्रम श्रोताओं के दिलों को जोड़ने का एक सुंदर माध्यम बन गया है। कार्यक्रम में पढ़े गए पत्रों के माध्यम से श्रोताओं की संवेदनाएं, उनके विचार, उनकी खुशियां और उनके अनुभव सुनने को मिले। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर पत्र में अपनेपन की एक सच्ची भावना थी। आपकी प्रस्तुति शैली भी अत्यंत मधुर और प्रभावशाली थी। कार्यक्रम की इंद्रधनुषी प्रस्तुति ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। कभी संगीत की मधुरता, कभी श्रोताओं की भावनाएं और कभी जापान तथा भारत के सांस्कृतिक संबंधों की झलक, सब कुछ मिलकर कार्यक्रम को यादगार बना रहे थे। साथ ही लिखते हैं, मैं स्वयं भी रेडियो के माध्यम से लंबे समय से जुड़ा रहा हूं और समाज, पर्यावरण तथा मानवीय विषयों पर अपने विचार साझा करता रहता हूं। हाल में मैंने हिरोशिमा और पोखरण की पृष्ठभूमि पर आधारित एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मानवता और शांति का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इसलिए जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने वाले आपके कार्यक्रम मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं।
1: रामकुमार नीरज जी, आपका पत्र प्रेम और स्नेह से सराबोर है। यह मंच आपका और सभी श्रोताओं का है, तो जाहिर है इसमें आप लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहती है सभी पत्र दिल से पढ़ें और श्रोताओं के मन में जो चल रहा है उसे भांपने का प्रयास करें। अगर इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा भी खरा उतरते हैं तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे।
0: हिरोशिमा और पोखरण की पृष्ठभूमि में आपकी रिपोर्ट अत्यंत दिलचस्प प्रतीत होती है, तो अगली बार जरूर विस्तार से बताएं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। और अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में।
0: रोहिणी जी, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में बात की कि आज एक जायकेदार रेसिपी साझा करेंगे, तो चलते हैं आओ पकाएं जापानी खाना की ओर।
1: हाँ, आज बनाना सिखा रहे हैं सोयाबीन बर्गर।

0: ये है NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा। आप सभी को अभिजीत दाते की ओर से नमस्कार।
1: सभी सुनने वालों को प्रखर मिश्र की ओर से भी प्यार भरा नमस्कार।
0: आओ पकाएं जापानी खाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है, इसलिए आज हम दलहन का उपयोग करके एक व्यंजन बनाना सिखाएंगे। आज का व्यंजन है सोयाबीन बर्गर, जिसमें हम मांस के स्थान पर सोयाबीन का उपयोग कर रहे हैं, जिसे खेत का मांस भी कहा जाता है।
1: और यह व्यंजन सिखाने के लिए आज भी हमारे साथ हैं पाक कला विशेषज्ञ अकीको वातानाबे।
2: कोनिच्वा, वातानाबे अकीको देस। क्यों शोकाई सुरु मामे नो हैमबर्गर वा मामे तो
0: ये कह रही हैं नमस्कार, मैं हूँ अकीको वातानाबे। आज हम सोयाबीन बर्गर बना रहे हैं जो बहुत पौष्टिक होते हैं। इसमें हम सोयाबीन के साथ उमामी यानी जायका बढ़ाने के लिए अच्छी तरह भुने हुए प्याज का इस्तेमाल करेंगे। साथ में सजाएंगे मौसमी सब्जियां और ऊपर से डालेंगे एक खास सॉस, जिससे यह व्यंजन देखने में सुंदर और खाने में मजेदार बनेगा।
1: तो सबसे पहले आपको बता देते हैं चार लोगों के लिए यह व्यंजन बनाने की सामग्री। बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए 300 ग्राम उबले हुए सोयाबीन, 100 ग्राम प्याज, 10 ग्राम मक्खन, एक अंडा, आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ी मिर्च और एक बड़ा चम्मच मैदा।
0: साथ में परोसने वाली सब्जियों के लिए ले लीजिए 100 ग्राम शिमेजी मशरूम, 4 ताजे शीताके मशरूम, एक टुकड़ा या लगभग 120 ग्राम कमल ककड़ी और 200 ग्राम दाइकॉन मूली।
1: और नींबू वाला सोय सॉस बनाने के लिए तैयार रखिए आधा नींबू, एक बड़ा चम्मच सोय सॉस और आधा छोटा चम्मच चीनी। इसके अलावा बर्गर की टिक्कियों और सब्जियों को पकाने के लिए थोड़ा तेल भी चाहिए।
0: तो चलिए अब व्यंजन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को महीन काटना है, इसके लिए उसे 3 मिलीमीटर के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए।
1: प्याज को काट लेने के बाद उसे भूनना है, तो एक फ्राइंग पैन गर्म कीजिए और उसमें मक्खन डालिए। आंच मध्यम रखिए। जब मक्खन लगभग आधा पिघल जाए तब प्याज डाल दीजिए।
0: ये कह रही हैं प्याज भूनते समय उसे पूरे पैन में फैला लीजिए। मक्खन से भूनने पर प्याज के अपने स्वाद में निखार आ जाता है और व्यंजन का उमामी यानी असली जायका बढ़ जाता है।
1: भूनते समय बीच बीच में प्याज के टुकड़ों को थोड़ा हिला लीजिए, वे धीरे धीरे पारदर्शी होने लगेंगे।
0: जब प्याज हल्का भूरा हो जाए तब उसे गैस से उतार लीजिए और एक थाली में फैलाकर ठंडा होने दीजिए।
1: अब बारी है बर्गर की टिक्कियां बनाने की। आज हम डिब्बा बंद सोयाबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डिब्बा बंद सोयाबीन उपलब्ध ना हो तो आप सूखे सोयाबीन को उबाल सकते हैं।
0: इसके लिए 125 ग्राम सूखे सोयाबीन के दानों को ढेर सारे पानी में रात भर भिगो कर रखिए और फूले हुए दानों को सुबह एक पतीले में डालकर 3 से 4 घंटों तक हल्की आंच पर पकाइए। नर्म होने के

0: बाद आपके पास 300 ग्राम उबले सोयाबीन के दाने तैयार हो जाएंगे।
1: अब उबले हुए सोयाबीन को मसलना है, लेकिन उससे पहले कुछ दाने अलग हटा लीजिए। इनसे हम बर्गर को सजाएंगे। हम 8 टिक्कियां बनाने वाले हैं, तो हर टिक्की के लिए 3 यानी कुल मिलाकर सोयाबीन के 24 दाने अलग रख लीजिए और बाकियों को मसल लीजिए।
0: उन्हें पूरी तरह मसलने की जरूरत नहीं है, कुछ टुकड़े बड़े रह सकते हैं।
1: मसलने के बाद नमक और मिर्च डालिए और लकड़ी के चम्मच से ही अच्छी तरह मिला लीजिए। इसके बाद एक अंडा फेंटिए और उसे भी मसले हुए दानों के साथ मिला दीजिए।
2: 卵は一度に入れると混ざりにくいので、3分の1ぐらいを入れて。
0: सारा अंडा एक साथ मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही डालिए। जब वह अच्छी तरह मिल जाए तब दूसरा हिस्सा डालिए। अगर आप सारा अंडा एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा।
1: अंडा मिला लेने के बाद मैदा डालना है। मैदा मिलाने से टिक्कियां बनाना आसान हो जाएगा। और उसके बाद डाल दीजिए ठंडा भुना हुआ प्याज।
0: सब कुछ मिलाने के बाद टिक्कियां बनाने का मिश्रण तैयार है।
1: आज हम छोटी टिक्कियां बनाने वाले हैं, इसलिए मिश्रण को 8 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए और 1 सेंटीमीटर मोटाई की गोलाकार टिक्कियां तैयार कर लीजिए।
0: अब हम अलग रखे सोयाबीन के दानों से टिक्कियों को सजाएंगे। उन्हें इस तरह टिक्की में लगाइए कि वे उभरे हुए न रहें। आप सोयाबीन के दानों को आंखों की तरह लगाकर टिक्कियों पर चेहरे बना सकते हैं या उन्हें फूल की आकृति में लगा सकते हैं।
1: आज हमने फूल बनाए हैं। अब इन टिक्कियों को एक थाली पर रख लीजिए और साथ में परोसने वाली सब्जियां तैयार कर दीजिए।
0: आज हम शरद में मिलने वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास हैं 2 तरह के मशरूम और कमल ककड़ी। शिमेजी मशरूम का सख्त निचला हिस्सा काट दीजिए और मशरूमों को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। शीता के मशरूमों का भी सख्त निचला भाग काट दीजिए और मशरूमों को आधा काट लीजिए। कमल ककड़ी का छिलका उतारिए और मोटे टुकड़े काट लीजिए।
1: कमल ककड़ी के टुकड़े लगभग 7 मिलीमीटर मोटे होने चाहिए, इससे वे आसानी से पकेंगे।
0: इसके बाद दाइकोन यानी बड़ी मूली का छिलका उतार कर उसे कद्दूकस कर लीजिए।
1: ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि मूली के रेशे टूट जाने चाहिए।
0: कसी हुई मूली में बहुत सारा पानी होता है, इसलिए उसे एक छलनी में डालकर हल्के से निथार लीजिए, नहीं तो टिक्कियों में नमी आ जाएगी। मूली को दबाकर पानी मत निकालिएगा, उसे छलनी में रखा रहने दीजिए ताकि अतिरिक्त पानी अपने आप झर जाए।
1: बर्गर को जापानी स्वाद देने के लिए आज हम कद्दूकस की हुई मूली और नींबू वाले सोया सॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सॉस बनाने के लिए नींबू के रस में सोया सॉस मिला लीजिए और उसके बाद नींबू का खट्टापन और सोया सॉस के नमकीन स्वाद को हल्का करने के लिए थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। फिर इन्हें अच्छी तरह मिलाइए।
0: अब पकाना शुरू करते हैं। पहले सब्जियों की बारी।
1: फ्राइंग पैन को गर्म कीजिए और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालिए। जब तेल पूरे पैन में फैल जाए तब उसे मशरूम और कमल ककड़ी के टुकड़े के साथ बिछा दीजिए। इन्हें हिलाइए नहीं, कुछ देर पकने दीजिए। सारी सब्जियां डालने के बाद पैन पर ढक्कन लगा दीजिए और भाप में भून लीजिए।
0: लगभग 1 मिनट बाद ढक्कन हटाकर सब्जियों को पलट लीजिए और ढक्कन फिर से लगाकर 1 और मिनट के लिए भाप में भूनिए।
1: अब बारी है सोयाबीन की टिक्कियों की। फ्राइंग पैन को एक साफ कागज से पोंछ लीजिए और फिर से तेल डालिए। जब पैन गर्म हो जाए तब उसमें टिक्कियां रख दीजिए।
0: टिक्कियां नर्म हैं, इसलिए हिलाने पर आसानी से टूट सकती हैं। उन्हें हथेली पर रखकर थोड़ा ठीक कर लीजिए और फिर सोयाबीन के दानों की सजावट वाली सतह नीचे की तरफ रखते हुए पैन में रखकर पकाइए।
1: 8 टिक्कियां पैन में रखने के बाद आंच कम कर दीजिए और निचली सतह हल्की भूरी होने तक पकाइए। टिक्कियां नर्म हैं, इसलिए जब तक वे थोड़ी सख्त न हो जाएं उन्हें हिलाइएगा नहीं। उसके बाद उन्हें पलट लीजिए।
0: टिक्कियों को हल्की आंच पर पकाइए ताकि वे अंदर से कच्ची न रहें। फ्राइंग पैन पर ढक्कन लगा दीजिए और 2 मिनट तक पकाइए।
1: जब टिक्कियों में मौजूद अंडा पूरी तरह पक जाएगा तब टिक्कियां तैयार हो जाएंगी। उसके बाद उन्हें थाली में सजा सकते हैं।
0: तो एक थाली में 2 टिक्कियां साथ साथ इस तरह रखिए कि एक टिक्की दूसरी पर थोड़ी चढ़ी हुई हो। इस तरह रखने पर वे देखने में स्वादिष्ट लगती हैं।
1: इसके बाद टिक्कियों के आसपास मशरूम और कमल ककड़ी सजा दीजिए।
0: फिर कद्दूकस की हुई मूली को इस तरह रखिए कि उसका कुछ हिस्सा एक टिक्की के ऊपर रहे, और खाने से पहले मूली पर नींबू वाला सोया सॉस डालकर परोसिए।
1: शरद में खाने के लिए बढ़िया ताजगी भरे जापानी स्वाद वाले सोयाबीन बर्गर तैयार हैं।
2: 今日ご紹介した豆のハンバーグは
0: दोस्तों, आज हमने जो बर्गर बनाना सिखाया, इसे आप तरह तरह के सॉस और सब्जियों के साथ खा सकते हैं। सोयाबीन की जगह आप दलहन की किसी दूसरी किस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये व्यंजन जरूर बनाकर देखिएगा।
3: वायला जी, यह व्यंजन तो बनाने में आसान लग रहा है, मैं जरूर इसमें हाथ आजमाना चाहूंगी।
4: हाँ, जरूर बनाएं और हमें भी खिलाएं, और दोस्तों आप भी बनाकर देखें। बहरहाल अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को
3: और रोहिणी रमन को
4: सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: यह है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। सामईन की अपनी महफिल में सामईन का इस्तकबाल करते हैं।
1: आज की महफिल में शामिल है एक इंटरव्यू और एक खासुल खास ऐलान।
0: लेकिन सबसे पहले है इंटरव्यू।
2: NHK के नए माली साल से हमारी उर्दू सर्विस में एक नए मुतरजिम सैयद शबर हुसैन शाह शरीक हुए हैं। आज खलील शिराजी साहब महफिल में दीवान खाना में उनका शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं।
1: जी शबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दीवान खाना में, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुरू में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जापान आपका कैसे आना हुआ और कब आना हुआ?
3: जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। मैं मास्टर स्टूडेंट था और हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट कंट्री को टारगेट किया हुआ था कि इस कंट्री में जाऊंगा और उस कंट्री में। जापान जो था बड़ा मतलब एक तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसके ज़रिए मैं आया इधर। मैं उस पे काफ़ी ट्राई की, एक साल पहले भी की थी, दूसरे साल जब किया तो लकीली मेरा एडमिशन हो गया इधर जापान में।
1: सब्जेक्ट आपका कौन सा था और एग्ज़ाम कौन सा था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे?
3: मेरी एजुकेशन तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड और उसमें सॉइल साइंस से मेजर है। मैक्स स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू हम आए थे, उसका एक इंटरव्यू होता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर वो क्लियर हो जाए तो देन आप आ सकते हैं और स्कॉलरशिप पे।
1: तो स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या चीज़ें हुकूमत की तरफ से मिलती हैं या मेरे ख्याल में हुकूमत जापान की तरफ से?
3: जी जी, ऐसे ही है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको एक स्टाइपेंड देते हैं, उसमें आपने सारा अपना लिविंग भी कर सकते हैं और बाकी ट्यूशन फी वो सारी एग्जम्पशन होती है।
1: अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप में यानी कि आपके कोई दबाव नहीं है, आप आसानी से आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं स्टाइपेंड से?
3: हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मतलब कि जब वहाँ की इनकम और उस लिहाज से अखराजात भी हैं तो इधर की स्टाइपेंड वो ऑलरेडी ये सारा कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। हाँ, ये रिसेंटली एक दो साल में काफ़ी महंगाई हो गई है उस पे अभी, मतलब जितना स्टाइपन है शायद थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अभी भी गुजारा कर सकते हैं आप जितना वो स्टाइपन देते हैं ना।
1: अच्छा, तो आप उसमें अपेयर हुए और उसमें कामयाब हुए?

0: उसके बाद जापान आए, तो कहाँ पे दाखला लिया और क्या करना चाह रहे थे, मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल, क्या?
1: जी मैं नागासाकी यूनिवर्सिटी में आया था और पीएचडी के
0: किस साल की
1: लिए,
0: बात है?
1: ये 2021 2021 में
0: अच्छा,
1: मैं जब किसी दोस्त को बताता कि मैं नागासाकी जाने लगूँ तो पहला सवाल ये होता कि वो जिधर एटम बम
0: जी,
1: गिरा
0: पाकिस्तान में ये दो शहर बहुत
1: था
0: मशहूर हैं।
1: हिरोशिमा
0: सही
1: नागासाकी,
0: सही,
1: तो मैं कहता हाँ उधर जाने लगूँ। वो कहते हैं बच के रहना उधर, अभी भी रेज हैं वो पाकिस्तान में, अभी तक है ना वो
0: मिसकंसेप्शन है जी,
1: हाँ।
0: बिल्कुल इस हवाले से सही।
1: तो जैसे मैं जापान में आया तो नागासाकी में देखा बिल्कुल वो उस तरह से रेज वगैरह का कुछ नहीं है, रेज है ही नहीं,
0: खत्म, जी,
1: ख़त्म हो गई। तो बाकी पानी भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है और बहुत पुरसकून जगह है नागासाकी।
0: तो
1: ऐसे
0: पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं?
1: मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ
0: अच्छा, तो यानी पहलवानों और लजीज खानों के लिए मशहूर है।
1: जी जी ऐसे
0: तो कैसा लगा जापान आके? पहलवान तो शायद आपको नजर आएंगे, तो लजीज खानों के बारे में बताइए, क्या फर्क आपने फील किया, इंप्रेशन क्या था आपका?
1: खानों का, एक तो हमारा वो थोड़ा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी है उस लिहाज से, और दूसरा वाकियन अभी तक खानों को मिस ही करते हैं। पाकिस्तान के खाने और तरह से हैं और जापान के खाने बिल्कुल डिफरेंट किस्म
0: क्या
1: के हैं।
0: फर्क है मसलन?
1: मसलन
0: मसाले, मिर्च की
1: हम
0: कमी?
1: मसाले, मिर्च और हैवी चीज़ें, फुल घी डाल के और तड़का लगा के वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जापान में हेल्दी तो हैं लेकिन उस तरह से मसाले मिर्च नहीं है, तो
0: अच्छा,
1: इस वजह से मज़ा नहीं आता।
0: तो जापान का इंतखाब आपने क्यों किया? आप यूरोप जा सकते थे, आप अमेरिका जा सकते थे, आप पाकिस्तान में ही कर सकते थे, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आपने पीएचडी के लिए जापान का इंतखाब क्यों किया?
1: मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप देख रहा था तो एशिया में मैं ज़्यादा देख रहा था, और जापान एक लिहाज से बिल्कुल एशिया का समझ लें ऐसी जगह के सारे यहाँ आना पसंद करते हैं। मैं जब एडमिशन हो भी चुका था तब भी मैं किसी को बताता कि मैं जापान जाने लगूँ तो एक अलग तरह से वो मुझे देखते, इज्जत देते कि वो जापान, जापान का एक नाम है सिविलाइजेशन के लिहाज से और तरक्की के लिहाज से, तो इस वजह से मेरा भी ज़्यादा दिल यही था कि मैं जापान जाऊँ।
0: पाकिस्तान में आप तकरीबन 16 साल पढ़ते रहे, फिर
1: जी
0: उसके बाद आप यहाँ पे आए,
1: जी जी
0: तो क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ तालीमी निज़ाम में, जो तालीम का तरीका है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि जापान आगे निकल रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में, और एग्रीकल्चर भी इज़ आई थिंक नो एक्सेप्शन?
1: जी जी ऐसे ही है, मेन वजह यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान में है उसमें ज़्यादातर थोरेटिकल चीज़ें हैं और सिर्फ हम वही पुराने अंदाज़ में लेके चल रहे हैं, वही नोट्स हैं और पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, चलते हैं नहीं चलते, मतलब हम बहुत रिसर्च के लिहाज से उस तरह से काम नहीं कर रहे और उसकी उस तरह पब्लिकेशन भी नहीं होती। और लेकिन जापान उसके लिहाज से मतलब बहुत तरक्की याफ्ता है और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करते हैं और इनकी रिसर्च दुनिया में मानी जाती है, बहुत स्लो अंदाज़ में, स्लो एंड स्टेडी अंदाज़ में, लेकिन उसको बेहतरीन अंदाज़ में वो रिसर्च आउटकम लेके आते हैं, इस वजह से शायद
0: जल्दी नहीं करते?
1: जल्दी नहीं करते।
0: अच्छा,
1: हम शायद थोड़े से शॉर्टकट भी ले लेते हैं कि जल्दी आउटकम आए और बस पब्लिकेशन ले लें, लेकिन जापान में बहुत स्लो लेके चलते हैं और उसका एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इधर क्या बेहतरी है और इसको किस तरह करें और फिर जो आउटकम निकलती है और वो वाकयान जो है वो दुनिया में सभी में मानी जाती है कि ये जापान में काम हुआ है।
0: सही। तो आपका रिसर्च किस हवाले से था?
1: मेरी रिसर्च इन्वायरमेंटल साइंस में जो है वो सॉइल में जो हैवी मेटल कंटेमिनेशन हो जाती है, ये रिसेंटली जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी वजह से, दूसरे जो वेस्ट वगैरह हैं उसकी वजह से मिट्टी में और पानी में
0: आलूदगी होती?
1: आलूदगी होती जा रही है,
0: अच्छा,
1: तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगर आलूदगी वाली ज़मीन पे अगर हम पैदावार कर लें वो अब कंटेमिनेशन उस फूड में आ सकती है,
0: सही,
1: अगर वो हम खाएंगे तो वो हमारे जिस्म तक आ जाएगी और उसकी बहुत कार्सिनोजेनिक मतलब बहुत सीवियर डिजीजेज है, तो उसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं इसके हवाले से मेरी रिसर्च थी पीएचडी में।
0: अच्छा। गुजरांवाला मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, और ये मसला वहाँ पे भी होगा, क्या समझते हैं आपके इस जो इस रिसर्च है, इससे उसमें कोई फ़ायदा होगा, आप उसको यूटिलाइज करेंगे एक्चुअल ग्राउंड पे?
1: गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है और जैसे जापान में एक तरह से आलूदगी जो इंडस्ट्री से निकलती है उसको कंट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा उस तरह से मैनेज नहीं किया जाता, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा आलूदगी हो रही है, अभी आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा मसला है उधर पानी का, और फिर वो पानी जो मिट्टी में जाता है वो मिट्टी भी आलूदगी हो जाती है।

0: ये रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला अगर उधर काम करने का, तो इसको जो मैंने यहाँ रिसर्च की है पढ़े उसको उधर करेंगे,
1: इस्तेमाल में लाएंगे और
0: इस्तेमाल में
1: लोगों को
0: लाएंगे।
1: इससे फ़ायदा होगा
0: जी
1: डेफिनेटली। अच्छा, तो अब अगर आप वापस जाते हैं, लेट सपोज़ आप इसी काम के लिए जाते हैं जापान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज़ को मिस करेंगे जापान का, या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद आएंगी वहाँ पे?
0: सफाई के लिहाज से मतलब जापान काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, रोड हर जगह मतलब टॉयलेट, इवन टॉयलेट भी बहुत साफ़ है। और दूसरा डिसिप्लिन लाइफ है बहुत ज़्यादा, हम उधर थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं काफ़ी चीज़ों में। सच्चाई ईमानदारी ये वैसे जापान मशहूर है, तो ये भी चीज़ें काफ़ी मतलब के मिस करूँगा, क्योंकि उधर थोड़ा सा हमारा रहना सहना बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से होता है। इधर बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, हर चीज़ हर काम एक वक्त पे हो रहा
1: तो शुरू में कोई मुश्किलात आपको पेश आई हैं, जैसे कि हर चीज़ वक्त पे? मुझे तो काफ़ी फील हुआ था, और डिसिप्लिन भी थोड़ा सा भारी गुजरता है,
0: है।
1: बंदा एक साल
0: हाँ
1: तो लेता है।
0: यस,
1: तो आपको कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई थी?
0: मैं जिस टाइम आया था 2021 में, तो उस टाइम ये कोरोना का अभी एंड ही हो रहा था, मेरी शायद फर्स्ट फ्लाइट थी जो इधर लैंड हुई थी, उसके बाद दोबारा वैसे बैन लग गया
1: सही सही,
0: था।
1: ओमिक्रॉन आ गया था मेरे ख्याल में,
0: हाँ
1: शायद उन दिनों की बात।
0: हाँ हाँ वही, मतलब एक ही फ़्लाइट आई थी और उसमें मैं आ गया। मुझे प्रोफेसर भी कहते तुम बड़े लकी हो,
1: सही,
0: उससे पहले भी बंद थी और उसके बाद भी 1-2 महीने बंद हो गई थी। तो बहरहाल मैं आया, और पहले तो 14 दिन का इधर क्वारंटाइन था, वो तो मैं चलो अकेला रह लिया। फिर जब नागासाकी गया और मतलब कि बिल्कुल अकेला, उधर पाकिस्तानी भी नहीं था यूनिवर्सिटी में मेरे, ना पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ, मतलब एक तनहा ज़िंदगी। और पाकिस्तान थोड़ी सी सोशल लाइफ है, यहाँ तो
1: हर बंदा अपने काम में मगन।
0: मगन है, और बहुत प्राइवेट लाइफ, मतलब कोई उस टाइम तो एक फ़ासला बना लेते, चलते भी
1: हाँ हाँ वाकई
0: फ़ासला
1: वो
0: बना
1: भी
0: लेते
1: ज़्यादा
0: थे
1: हो
0: कि
1: गया था।
0: हाँ
1: सही,
0: वो वक्त तो ऐसे मुझे लगा मैं किधर आ गया हूँ। तो काफ़ी शुरू में डिप्रेशन भी होने लगा, मतलब 1-2 माह मैं बिल्कुल परेशान था कि मैं किधर आ गया हूँ, कोई खास कम्युनिकेशन नहीं है, एक तो लैंग्वेज बहुत
1: तो लैंग्वेज
0: बड़ा।
1: सीख पाए या नहीं इसके बारे में बताइए, जापानी जबान?
0: मैंने कोशिश तो बहुत की, यूनिवर्सिटी में भी क्लासें कुछ लीं, एक N5 लेवल मैं कह सकता हूँ कि मुझे आ गया, मतलब कि बेसिक, बहुत बेसिक जो है वो मैं समझ सकता हूँ।
1: तो अभी बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं पाकिस्तान में, खासकर स्टूडेंट जो जापान आना चाहते हैं, खास तौर पे जो आपका जो स्कॉलरशिप है मैक्स का स्कॉलरशिप,
0: जी।
1: इसके थ्रू आना चाहते हैं, जो ताकि वो चाहते हैं कि फ्री में उनको एजुकेशन भी मिल जाए, एक्सपोजर भी हो जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो उसके दो वेज हैं, एक अम्बेसी ट्रैक है, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक। अम्बेसी ट्रैक जो है ये यही अप्रैल मई में अभी जापान अम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनकी वेबसाइट पे वो अनाउंस कर देते हैं, अभी ओपन हो गए हैं। तो सबसे पहले तो उसमें 80% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर में या मास्टर्स में,
1: सही,
0: अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं बैचलर में, और अगर PhD के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स में आपके 80+ मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं देन तो जापान आपको पक्का ले लेगा,
1: सही,
0: मतलब अच्छी प्रोफाइल को पक्का ले लेते हैं। तो उसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो उसी वेबसाइट पे होंगे, उनको फिल आउट करके आपने इस्लामाबाद भेज रहे होते हैं अम्बेसी को, फिर उसमें वो रिक्रूट करते हैं और कुछ कुछ शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर कुछ का इंटरव्यू या टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाता है और फिर आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। ये है एम्बेसी ट्रैक जो है स्कॉलरशिप मैक्स, और दूसरा
1: ये एक तरीका है।
0: ये एक
1: अच्छा, अब
0: तरीका
1: एक
0: है,
1: दूसरा तरीका बता
0: अब
1: रहे
0: दूसरा तरीका है
1: जी।
0: वो भी मैक्स ही है लेकिन वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है,
1: अच्छा,
0: उसमें आप अपने रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी हैं उनको ओपन करते हैं, और उनकी फैकल्टी में जाके उनकी फैकल्टी में अपने रिलेटेड जो रिसर्च प्रोफेसर्स हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, और उनसे कहते हैं कि मैं इस तरह से अपनी प्रोफाइल उन्हें शो करवाते हैं, अपनी CV उन्हें भेजते हैं कि मैं आपकी लैब में काम करना चाहता हूँ। अगर वो ओके कर देते हैं फिर वो यूनिवर्सिटी जो है आपसे कांटेक्ट करती है और डॉक्यूमेंटेशन लेती है, और फिर आपका एक इंटरव्यू भी होता है, और उसके
1: अच्छा,
0: बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं और जापान
1: सही
0: आते
1: सही सही सही। अच्छा, तो अब यहाँ NHK में आप ट्रांसलेटर हैं, तो इससे पहले भी ज़ाहिर है आप ख़बरें तो पढ़ते होंगे, तो यहाँ भी ख़बरों का आपका तर्जुमा की आपकी ज़िम्मेदारी है।
0: जी।
1: क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ जो दीगर मीडिया हैं और पाकिस्तानी, और ये जो NHK हमारा है, इसकी ख़बरों में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ?
0: पाकिस्तानी मीडिया में थोड़ा जज्बाती न्यूज़ ज़्यादा देते हैं, मतलब हेडलाइंस पे ज़्यादा वो होता है उनका फुल जोर कि ये किसी तरह लोगों की अट्रैक्शन लें, لیکن این ایچ کے میں یہ زیادہ نیوز پہ اور اس کا کنٹینٹ پورا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کہاں کیسے ہوا, اس کا نیچے فل ڈیٹیل بھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں دوبارہ ریمائنڈ نہ کرنا پڑے. تو وہ ایک ہی نیوز میں آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نیوز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے اور یہ ابھی نیوز کیوں آ رہی ہے.
1: اچھا, بہت بہت شکریہ شبر صاحب دیوان خانہ کو ٹائم دینے کے لیے. ہمارے نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ.
0: بہت شکریہ آپ کا.
2: جی سامعین, سید شبر حسین شاہ صاحب کی باتیں ہم نے سنی. آج گلوکار گن ہوشینو کا گیت سوزو ان کے نام کریں گے. اور آپ کو اس گانے کی تفصیل بتاتے چلیں کہ یہ گانا نینٹینڈو گیم سے منسوب ہے جو سپر ماریو برادرز کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر گایا گیا.
3: گین ہوشینو 1981 میں پیدا ہوئے سائتاما پریفیکچر سے تعلق رکھنے والے گین ہوشینو اداکار, موسیقار اور مصنف کے طور پر سرگرم ہیں.
2: انہوں نے این ایچ کے کی مارننگ ڈراما سیریز ہن بن آؤ کے لیے تھیم سانگ بھی کمپوز کیا.
1: ہمارے جاپانی عملے کی رکن محترمہ اوراتا نے یہ گانا کیوں منتخب کیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ لفظ سوزو کا مطلب ہے تخلیق. وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ گانا اس لیے منتخب کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نئے ٹرانسلیٹر سید شبر حسین شاہ مستقبل میں شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے.
3: اس دلچسپ اور منفرد جاپانی گیت کے ذریعے وہ نئے مترجم کو گرم جوشی سے خوش آمدید جاپان کا پیغام دینا چاہتی ہیں. گیت کے بولوں میں ہیں, آئیے کچھ تخلیق کریں, آئیے کچھ منفرد تخلیق کریں.
2: تو چلیے آئیے سنتے ہیں.